तन जियो तह को जग में, तन जियो तह को जग में, मुक्त हर चित्त में युद्ध विचार।

तम बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कही न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार। नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सोध, देही नु काढ़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी। तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदत, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं। साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं। वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाओ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना अज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी।

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हें देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर लिया, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, ता थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप। अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधते जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होंदे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वह है आत्मा, वह है वाहिगुरु जी की अंश, वह है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असी उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

पिताजी मेरे डंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। आज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथां नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकली, कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दूध है, माता बेसुध पई है, दूध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान कीता, कर दी पाठ ते दही रिड़काउं दिए, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इनू कुछ खिला। ते वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सां वीर मैं अखां पहले खोल दियां कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैन दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा, अज भी ओही भैन वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा। तली उत्ते मक्खन पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाड़ा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह। हजूर कहन लगे हां मरदाने यार तारा भी कई तरह दियां हैं, एक तार जेबे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइला बन गईया न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है, तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सदगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विनदी चीजां परोम दिए, तार विनदी चीजां परोम दिए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी, पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती, ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदानिया नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वाली। पर मरदाना काला है, 12 सालां तो बाद घर आया है, एड़ा कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते

महाराजन से छिन छेत लेत हो। कहूं वेद रीत कहूं तस विपरीत कहूं ते गुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खो लैंदा, किते ओह वेद दा रूप बन जांदा, किते ओह तिन्हां गुणां दा रूप बन जांदा, किते ओह सर्ब गुणां दा सपन्न वाहिगुरू मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओह अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेड़े जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा अतल अस्थान है, उथे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता है गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता है। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़िया बड़िया वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं था ते एक चीज नूं नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं था नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दियां लभ लो इस दे विचों पवित्र स्वरूप है, जागदी जोत है, इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने, लभण दी लोड़ है, लब जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीस उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे, ते कहिए महाराज तूं ते मुक्त है, सानू मुक्त कर दे, असी मैलां दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीस दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दियां मैलां रह जान, महाराज तूं मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हाथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा है, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा है, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा है। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा है, किन्ना सुखदायक हुंदा है, किन्ना रिलैक्स मिलदा है, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा है। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। आज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम कीता है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागाए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाउना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरबा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत।

प्रभु जे तू मेरे वल है तो फिर मैं किसी भी कोई खास चिंता नहीं करता, तो मैं सच सुना देना। जान तू अगर तू मेरे वल है ता क्या हो फिर हो किसी की की चिंता है, मैं सच सुनाइए, मैं असलियत सामने पेश करदा हां, तुहाडी रियालिटी तुहाडे सामने पेश करदा हां। की है रियालिटी साडी? कहंदे हन मुट्ठी धंदे चोर सेब गवाई। कहंदे धंदा एक ऐसा चोर है जिसने मुट्ठी मैंने लुट ली है, जिंदगी लुट ली है। यह सारे धंधे वाले सुननिया चाहिए यही पंक्ति, जेडे बिल्कुल धंधे दे विच तसे पए हैं, धंधा ही जीवन का कम रह गया है, धंधे लई नहीं सी असी आए। पर महाराज जी आखदे हैं मुट्ठी धंधे चोर, धंधा एक ऐसा चोर है जो सानू सबना नू लुट रहा है, साड़ी जिंदगी चुरा रहा है, और असी खुद उसनू एडमिट करते हां कि साडे पास फुर्सत नहीं, साडे पास टाइम नहीं। क्यों नहीं टाइम? धंधे चो टाइम नहीं मिलता, धंधा दिमाग ते सवार रहिंदा है घर आके भी। अजकल ते लोग इनफैक्ट दे मीट फॉर लंचेस बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मीटिंग्स, साडी सोशल गैदरिंग्स दे विच भी धंधा ही डिस्कस हुंदा है। हर सिटिंग दे विच, हर गैदरिंग दे विच धंधा ही धंधा डिस्कस किया जाता है। कहते हैं तू इस काम लिए आया से, सवाल यह समझने वाला है कि महाराज जी ये आख रहे हैं कि तू कीता की है, तेनू ये शरीर किस काम लिए मिलिया सी, ते तू ये पूछा जाना है कि चार गवाया हंड के चार गवाया सम, चार पहर दिन दे तू दौड़ भज के कामकार लगाते, चार पहर रात दे तू सौ के गवा दते, लेखा रब मंगे सी आ तू आहो केड़े काम। रब ने ते तो ये लेखा पूछना है कि तू किहड़े कम लई आया गया आया सी, इह इंस्ट्रूमेंट तेनू किस चीज दे वास्ते दिता सी, किस चीज नू प्राप्त करन दे वास्ते दिता सी। आओ पहला अज बाबा जी नू इह पुछिए कि बाबा जी सानू ते पता ही नहीं, सानू किहड़ा किसे ने दस्या? सानू किसे ने दस्या नहीं, बचपन तो ऐ सानू नहीं दस्या गया कि तुसी जन्म किस गल लई धारण कीता गया, धारण कीता। हाँ यह दस्या है कि तुसी वध तो वध पढ़ना है, दुनिया च कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, नाम बनाना है, अपना नाम रोशन करना है, माता पिता का नाम बनाना है, अते सुखी जीवन गुजारना है, आदि यह सानू दस्या गया। पर यह तो साडे आउण दा कोई पर्पस ही नहीं सी, वी डिडंट कम फॉर दिस। असी किस वास्ते आए सी? आओ महाराज जी तो अज गुरबाणी चो असी यह पूछिए पे महाराज जी तुसी आखदे हो कि शरीरा मेरिया क्या तुद कर्म कमाया, ते ये दसो भी इस शरीर ने की कर्म करना सी, की कम करना सी। वो कहंदे हन यह शरीर कुछ बुझण वास्ते आया सी, कुछ इसने बुझना सी, कुछ इसने रियलाइज करना सी, कुछ अनुभव करना सी, कुछ इसने जानना सी। कहते हैं

प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मतलब की पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मतलब पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मतलब इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनु हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी तो 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलते हैं जिथे सानू यह दस्या जाता है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हाँ। नंबर एक शरीर दुर्लभ वस्तु है दुर्लभ जिहड़ी ना असी बना सकते हाँ ना असी खरीद सकते हाँ यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है इस उत्ते किसी का जोर नहीं है यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो होंगी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके दुर्लभ वस्तु है साढ़े सबना दे पास और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड बड़े डिप्रेस्ड बड़े मायूस जिन्हें साढ़े पास कुछ भी नहीं है इस तरह फील करते रहने हालांकि साढ़े पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वह साढ़े पास है उसकी असी वैल्यू नहीं करते सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है रब दी औरत है रब दी पत्नी है काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है पर इस सुहागण नू जे पिर तो वाहिगुरु तो दूर लै जाओगे दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे ये कुमला जाएगी क्योंकि पिर तो दूर लै जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाती उदास हो जाती वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो साधु संगत च रखो गुरबाणी की संगत दे विच रखो तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा यह मौलेगा यह खिलेगा। इसनु अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ वो इसकी जिंद जान है ये मायूस हो जाएगा मायूस हो जाएगा। ये रब दी कामणी है इसनु रब दे नेड़े रखो इसनु उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी ये मंदिर है काया महल मंदिर घर हर का जिसमें राखी जोत अपार जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर का तिरस्कार नहीं किया जा सकता निरादरी नहीं की जा सकती इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता इस दे लई भी डिसरिस्पैक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुकता सी जो सारे ब्रह्मंड दे विच है सारे यूनिवर्स दे विच है जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे आ ये सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है जो खोजे सो पावे जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक कोड़ी है शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है जो कोड़ी है वो सवार दे उत्ते सवार होई पई है वो सवार दा आखा नहीं मनदी है कहिंदे इस दे उत्ते सवार हो वो भाव इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जांदे हां कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है सब तो उत्तम है बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर पीतर है। शरीर सरोवर दे अंदर कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वो कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हन कि शरीर सरोवर पीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हन कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जां कै रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जां कै रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तों बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो तां कि असीं अज ए नुक्ता लै के जाइए कि कमाल दी गल है, असीं ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ करांगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है। अते ए एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन्स दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक वो पहुंचा ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे वो होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उस दीआं विधियां की हैं, उस कमल नू खिलाण दे वास्ते कि वह खिले उस दीआं की रिक्वायरमेंट्स हैं। यह कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नू असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नू जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनू जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए ते उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नू समझ लईए और शरीर नू समझन तो बाद इसनू सानू साधना पैना है, इसनू सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नू साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नू समझ लवांगे इस नू साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नू एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नू पाउण नू महाराज ने कहा है उसनू असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग